0: Chuck 2, she's new. कहते हैं मेम बड़ी तीखी इसकी गेम. She's cool पर दिल की है फूल. बड़ी बड़ी टीमों का भुलाए हाल चाल. है ये इंग्लिश माल आजा प्रीति सबरवाल.
1: What? You have a problem with me?
0: Chuck 3, she stings like a bee. गाँव की ये छोरी खेले हॉकी चोरी चोरी. बाप भाई कोई रोके तो करे सीना जोरी. ड्रिबल में से तेज नहीं कोई साली हो या साला. आ गई भैया छा गई भैया कोमल चौटाला.
2: खेलने वाला खेल रहेगा रोकने वाला फेल रहेगा. जो ज्यादा मरोड़े मूछ चाट ले जाके

0: on the floor. घिसी हुई है पिया हुआ है घाट घाट का पानी सबसे सीनियर प्लेयर है ना करती है मनमानी हिम्मत और हिमाकत है टीम की है खलनायक अपने दिल में गेम बदल दे आजा बिंदिया नायक
1: अरे देखे हमने बड़े बड़े हैं कोच ये अंग्रेज से लाइन पे इनको लाना है साम दाम दंभेद से
0: जग बाय जिमी अडाइव कैप्टन है और गोली भी पर घर का गोल खाली है एक तरफ है बॉल और स्टिक दूसरी तरफ खुशहाली है
2: शादी मुश्किल गेम है पर प्लेयर हार कब माने हैं विद्या शर्मा इंडिया कैप्टन इसके

दर्द के तूफान दिल में उठते हैं, लम्हे सदियों की तरह कटते हैं। हम मिटाना चाहे जो कभी आपके नक्श कहां मिटते हैं। हमेशा तन्हाइयों की मजलिस में आपका हमने इंतजार किया, आपकी खातिर कमबख्त दिल ने दर्द में सिमटी हुई गहराइयों से भी प्यार किया।

यूं अरमानों पे छाएंगे शफक चाहत के, सोचा न था कभी। यूं हमारे चैन को इतनी तकलीफ पहुंचाएंगे लम्हे आपकी मोहब्बत के, सोचा न था कभी। यूं आपकी कशिश का जादू चलेगा जिस्मों जहां पे, कि आप ही आप नजर आएंगे अंजुमन में, सहरा में, जमी आसमां पे, सोचा न था कभी। हमेशा तन्हाइयों की मजलिस में आपका हमने इंतजार किया, आपकी खातिर कम वक्त दिल ने दर्द में सिमटी हुई गहराई।

हमने आपसे उम्मीद की भी तो क्या, थोड़ी सी शिद्दत, थोड़ी सी वफा, यूं हमारी इतनी सी गुजारिश कबूल करने के लिए आप हमें इतना तरसाएंगे, सोचा न था कभी। यूं हमारे ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए इस कदर आप हमें पल पल तड़पाएंगे, सोचा न था कभी। हमेशा तन्हाइयों की मजलिस में आपका हमने इंतजार किया, आपकी खातिर कम वक्त दिल ने दर्द में सिमटी हुई गहराइयों से भी प्यार किया।

0: जा सनी पुत्र बॉडी वॉश तो करा ले।
1: नहीं मैं साहब दीदी से बॉडी वॉश करवाऊंगा।
2: अरे रे रे रे रे। तो क्या बात है कर्नल साहब, आज सुबह सुबह नंगे पंगे माँ से पंगा ले रहे हो?
0: अरे देखो दामाद जी, ये पॉटी वॉश नहीं करा रहा, तंग कर रहा है नॉटी बॉय।
2: कोई बात नहीं बॉडी, आज मैं वॉश करा देता हूँ। चलो।
1: मम्मी पॉटी बहुत ठंडा लग रहा है।
3: क्यों मजा आ रहा है?

0: अभी से प्रैक्टिस शैक्टिस कर लो। क्यों साहिबा? पर देख लेना, तुम लोगों के पहले बेटा ही होगा।
1: अरे मुझे तो बेटियां चाहिए, और वो भी एक नहीं, तीन तीन।
2: तीन तीन? ओह माय गॉड, सो फास्ट।
0: अरे ऐसी कैसे बेटियां होंगी जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है।
3: अच्छा करण, एक बात बताओ, तुम्हें बेटियां कैसी चाहिए?
1: मुझे पहली तो बिल्कुल बीजी की तरह, मस्ती भरी आंखें, हंसने का अंदाज बिल्कुल फुलझड़ी जैसी।
0: फुलझड़ी?
1: और दूसरी
2: फुलझड़ी,
1: दूसरी बिल्कुल माँ और सिमरन जी जैसी। हाँ, शांत, फूलों की तरह, जहां से भी गुजरे अपनी खुशबू फैलाए।
2: और तीसरी?
1: तीसरी तो मेरी जान होगी, बिल्कुल मोनिका और स्वीटी बुआ जी जैसी।
0: जीजा जी पे सुसु कर दी। अरे बेशरम। अरे चलो चलो, अच्छा अच्छा शगुन है, गुड लक, बेटियां ही होंगी। हाँ देखो
3: आपके कपड़े खराब हो गए, जाइए बदल लीजिए।
0: तू यहाँ क्या कर रही है? कपड़े कौन देगा?
2: जाना जाना।
3: हाँ क्या किया?
0: बेशरम, इतना बड़ा हो गया। हाँ जीजा जी पे सुसु कर।

और अब महफिल शम्मा है जनाब मरहन उदास के रूबरू, शायर है शेख आदम आबू वाला।